0: But even as solar development expands, not all nearby villages have access to electricity. At night, Bhagirath, one of Kishanji's brothers, returns to a house that still has no grid electricity. While transmission lines may run nearby, extending power to scattered desert settlements has been a challenge.
1: चारों तरफ सोलर प्लांट लगा हुआ है, घर में लाइट नहीं है। वो कोई छोटी मोटी लाइट बैटरी बूटी से उसे काम चलाते हैं और चारों तरफ सोलर की लाइट है। हमारा लाइट डाने में नहीं, मकान में लाइट।
0: His family relies on a small battery-powered light from a portable solar panel, enough only for basic needs.
1: नहीं है लाइट, वजह से हमारे फसल नहीं ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। लाइट होती तो फसल ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं।
0: For families like Bhagirath's, the benefits of mass solar farm expansion that's happening in his very own village remain out of reach.

0: In Norang Desar village, another challenge shapes daily life: water. Santosh and Suraibane begin the day by walking more than 2 kilometers to fetch water for their families and livestock.
1: हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है हमारे पास में गांव के पास में पानी कभी कभी मिलता भी नहीं है
2: दूर जाके लाना पड़ता है लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जाके पैदल जाके लाना पड़ता है
0: In many drought prone parts of India water is still delivered by tanker trucks a temporary lifeline for villagers when local supplies run dry
1: हमारे टैंकर से मंगवा रहे हैं और टैंकर 5-7 दिन नहीं आ रहा है गर्मी में तो बहुत ही सारा ऊंट और पशु है वो भी तीसरा रहता है
0: With the arrival of solar farms, that limited water supply is now shared. Panels need to be cleaned regularly, especially in the dusty desert.
2: हमारे यहाँ एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सोलर प्लांट होने के कारण हमारे यहाँ टैंकर है वहाँ चले जाते हैं यहाँ पर नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है हमारे लिए कि पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है हमारे लिए
0: In the Thar Desert, where water has always been scarce, the demand for solar is placing new pressure on an already limited resource.

0: Over the past 30 years, the fishing industry has come smack up against the limits of the planet.
1: Many populations really collapsed or close to collapse.
2: Friendship is an essential, wonderful part of being a human being.
3: Go out and say hello to people. Smile at them. Try to have conversations with people.
4: At Standard Chartered, we're here for those who never stand still, who want trusted expertise in the world's most dynamic markets. Now is your time.
5: Rajasthan's solar expansion is transforming the desert landscape. The rapid growth has raised difficult questions about land for some. At the same time, solar is also bringing clear benefits. Farmers like Ram Dayal Chowdhury are seeing that firsthand.
6: ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना है इनमें हमारे को लाभ मिलते हैं छोटे मोटे किसानों के लिए बहुत फायदा हुआ है मेरे पास 15 बीघा जमीन है उसमें मैंने ये सोलर पंप लगाया हुआ है
5: Ram receives subsidies to install solar pumps for irrigation reducing his dependence on unreliable electricity
6: इसी फायदे की वजह से मैंने ये लगाया है ये 10 पंप और 10 किलोवाट का सोलर पंप है करीब इनकी लागत 4.5 लाख रुपया से लगवाया है ये इनसे फायदा हमारे को होता है ये मतलब बिजली नहीं लगती है बिजली का हमेशा बिल भरना पड़ता है इनका एक बार पैसा लगा हमारे को
5: Instead of monthly bills, it's a one-time investment. And over time, that has made a difference.
6: वो फायदा हुआ हमारे को अभी मेरे को एक बार ही पैसा देना पड़ता है ये 10 HP की मोटर चल रही है हमारे यहाँ इनका कोई खर्चा नहीं है ये 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बराबर चलती है कंटिन्यू
5: More than 2 million farmers across India currently benefit from this system.
6: कुल मिला के ये मतलब राजस्थान के अंदर ये फायदेमंद चीज है ये हमारे पहले लाइट से चलता था लाइट में हमारे वो परेशानी ज्यादा होती थी वो 6 घंटे लाइट देते थे कभी कटौती कर देते थे कभी 4 घंटा भी कर देते थे अब हमारे को मतलब 14 घंटा गर्मी में 12-14 घंटा तक सोलर पंप से लाइट चलती है हमारे को डबल फायदा हो गया
5: For farmers like Ram, solar power has become a practical solution.